प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुष ठाकुर को रकम नमाहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तुसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तुस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याग ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोवे जय मनाड पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तु सब कहू मान मुख ताको जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान भावे नानक पात सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिबलावत सराम सनेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल शिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताक्या है जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे है जय प्रसाद आ भुखन बहरीजै मन ते सिमरत क्यों आलस की जाय जय प्रसाद अशुभ हस्त सवारी मंत सिमरभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तुआ चार व्यवहारी तिस प्रभ को सासा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सोभ्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सोभ्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पतरा है गुरप्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करणनाथ जय प्रसाद बेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुरप्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे।

सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का वह आचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नान, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का है सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा खेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न भार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

सत्संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे भाव जपिए हार बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दुर्गे नानक जन मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार सेत नमंत गनी संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इतुत कियो सोजी जाने नाम संग जसगा मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुरप्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर जन रहत अंतिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जि जन की आशा तिसकी घटिए जमकी भाषा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्म जिसको हर पर मानचित आवे सो संसो हिला नहीं डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेवा को किस तरह डरा जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजा गुरप्रसाद तत्सब बुझा जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल नह के जन्मे नह किश मरे आपन चलते आप ही करे आवन ज्यावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रज थाप उथाप अभिनाशी नाय किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत सगल संसार दुरह तनमंत प्रभु के सेवक सगल उदान प्रभु के सेवक दुख विसार नापे मेल लय कृपार गुरगा शब्द भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बटभागे नाम जपत पामे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वै सो हुए करने हार पछाण सो प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे बजे तस्माहे समाये वे सुख निधान उन्हों बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तुस्ते बिरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जैसो प्राणी लोचा कोय तस्में ना ही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूपन तो नाही मोहाय प्रभु की जोत सगल घट सुहाय तलवंता क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दरबाय अत सूरज कऊ कहा।

आर अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात भक्तन श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न किशोया अपन सो सब जगत परोहे जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ सराके तस्कुए ना मारे सो मुआज मनो बिसार है तिस्तज अवर का को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो सात गुण निधान बेअंत बार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप प्रतपाले जी अनुभव पां जो जो रचो सुत से त्याद जिस भावित लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या करन हार नानक जान्या जन लागा हर एक ना तिसकी आस न मृत्यु जाए सेवा को सेवा बन आई हुकम बूझ परम बदभाई से प्रण ही विचार जाके मन वस्या दृंकार बंधन तोर भय निर्भय रंदन पूजे गुरु के पैरे लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम दत्त करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन नर के गुण गाओ ब्रांतरन का यह स्वाट पैर प्रपेखो नेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक फल पावो हालत पल तो ले सवार राम नाम मंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसाए ते साज प्रीखिया मंत्र नाम जपो ले बुलाए दुख दर्द मनते भाव जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिसे दूर गांव को जाबरे रखना हार ते अंदर भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए।

और बंदन पर्वत पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन बाणी वह संतर माहे चार गुण दे धसे समाहे तिस्ते भिन्न को ठाऊं गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद ब्राण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोला आप अडोला कब हूं डोला सर्व कला कर खेला खेल मोला पाइय गुणे अमोल सर्व जोत में जाकी जोत हार्यो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद ब्रह्म का रास नानक तिन में ए विश्वास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ये रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने कर्ण ग्राम नहार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सात तिस प्रभ ते सगल उत्पात तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार अनकला लखी न जाय जिस भावत सिलाये मिलाये कवन निकट कवन कहिए दूरा पिया पा भरपूर अंतर्गत साव जनाए नानत जना बुझाए सरभूता प्रतारा सर्वनैना पेखनहारा सगल समग्री जाका तना पंजस आप ही सुना मजान खेल बनाया गया गारी गिन्नी माया सबके मत अलप तो रह जो किश कहना सो आपे कह आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तालय समाये इसते हुए सो नाही बुरा उरे कह कि न कुछ करा भला कर तू तत नेकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आपन संग रात आगी गतविद कही ना जाए दूसरे ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख हो आप मिलाए लय प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया।

अमोल पंडहर अमोल आवह अमोल लय जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल प्रवान।

देवी सोहन सदा सुवारे। गावे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले।

अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। प्रजाहि प्रयात शांत नमो सर्वमाने समभक्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे,

प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे पिजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ति चतर चक्र परति चतर चक्र पाले चतर चक्र काले।

के सर्वत्र पेशय, के सर्वत्र कालय, के सर्वत्र पालय, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजय, के सर्वत्र राजय, के सर्वत्र सोखय, के सर्वत्र पोखय, के सर्वत्र तराणय, के सर्वत्र पराणय।

संगीत कामे त्रिभंग त्रिपादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सु सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है छेज है अछूत है के नरकंग प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद

आजाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत वे प्रसाद, सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल शांत वै प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे पंगं विभुते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभुते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्प

0: जय खुदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब सिंह जी आप जी नूं गुरदा सफरी मौन तो अमृत विद्वान विच श्री आसा की वार दे शब्द की तरह जुड़ रहे सन। भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले का कीर्तनी जत्था, भाई साहब जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सतगुरां जी वालों अमृत वेले बख्शिश होए पवित्र हुक्मनामे की पवित्र मुखवाद की कथा सरण करवाउणगे भाई लखविंदर सिंह जी खालसा जी। उन्हां पासों प्यार सका सरण करो जी। सतसंग जी आने वाले 9 अक्तूबर तो लैके 14 अक्तूबर तक शाम के दीवान विच भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले कथा करया करनगे। ऐतवार दीवान विच भी जो कि 9-14 अक्तूबर में है दोपहर दीवान च हाजिर भरनगे। आज उन्हें सारे दीवाना च हाजिर भर के लाहे प्राप्त करने हम कथा रहे जुड़ना करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु

जपा हर नानक कंठ मजारे अलाही जोत पंजवे जामे दे विच कि मैं अपने कंठ दे विच मेरे कंठ च रहे ते किड़ा हार रहे उदे नाम दा हार रहे हर हर कंठ ते रिया ते हिरदे च आएगा हर हर चरण हृदय उर धारे मैं उदे चरणा नाल जुड़िया रहा ते उदे चरणा चू राज भी मिलेगा उदे चरणा चू मुक्ति भी मिलेगी उदे चरणा चू उदे नाल मलाप भी होएगा सिख दियां आसां ही खत्म हो जाणगियां सिख नूं अपने वर्गा बना लेगा जो अपने वर्गा बना ले उदों इहदे लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हार प्रभ आपे मिले सतगुर साहिब जी ने कृपा करके इलाही फरमान दी विचार कराई विचारा करदिआं बहुत भुल्लां होईआं सतगुर साहिब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जाण के माफ करियो होईआं भुल्लां दी माफी दे आनंद साहिब दा पाठ आओ सारे रल के करांगे करो कृपा बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

का सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैव गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नामे हर शुभ चिंता लाहे हमारी तिन्ने ताप नवार हारा दुखंता सुखरास ताको विघ्न को लाग जाकी प्रभ आगे अरदास जाकी प्रभ आगे अरदास कोई आवै संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे धन गुरु नानक धन

0: ठोठ महला पंचम हम मैले
1: तुम उजल करते
0: हम निर्गुण तुम दाता हम मैले तुम उजल कर हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर तू सर्व कला का ज्ञान हम मूर्ख तुम
1: चतुर
0: तू सर्व कला का ज्ञान माधो हम ऐसे तुम ऐसा
1: माधो हम ऐसे तुम ऐसा
0: तुम पाप हम पापी
1: तुम पाप खंडन
0: नीको
1: ठाकुर देसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाचे जियो पिंड दे प्राणा तुम सब साजे

0: दान देहो मेहरबान। तुम करो पला हम पलो न जान, तुम सदा सदा दयाला। तुम करो पला हम पलो न जान, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख बिदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पुरख बिदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाच। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाच। कहो नानक हमें है हवाला, राख संतन कह पाछ। कहो नानक हम है हवाला, राख संतन कह पाछ।
1: गौड़ी महल्ला पंजी।

सम्मानयोग गुरु सवारे सत संगी जनो सतगुरु गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र दरबार दे कीर्तनी भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी ने सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी प्रसन्नता लैण लई इस सीडी विच सतगुरु गुरु रामदास जी दी सिफत विच अमृत बचना दा कीर्तन हाजूर दी प्रसन्नता लैण लई कीता। सारे शब्द तकरीबन सतगुरु दी सिफत सलाह ते गुरु जी दी वडियाई दे विच ही गुरु ग्रंथ साहिब विचों जो लै गए ए हजूर दी वडियाई विच उचारण कीते ते इन्हां दा शब्दां दा प्रकरण यही है कि अपने समर्थ सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी सिफत सलाह उसनूं धन कह के वड्डियां कह के उच्चा कह के समर्पित कीती जाए। गुरबाणी मुताबक यह सच्चाई है कि जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा दी समर्थ गुरु दी उपमा करेगा वड्याई करेगा ते गुरु उस वड्याई विच वड्याई करन वाले नूं बरकतां बख्शां देंदे। आम तौर ते संसार विच दो बिरतियां प्रचलित ने, एक उस्तत ते दूसरी निंदिया। संसार दी उस्तत लालची खिरशी तमा वाला बंदा करता है ते जो हिरस लालच तमा रख के स्वार्थ रख के किसी दी झूठी उस्तत करेगा ते कुदरती है ओ ईरखा वस होया द्वेष वस आया अंदर दे हंकार दी सट वजन दे कारण किसी दी निंदिया भी जरूर करेगा। संसार दी उस्तत दा दूसरा पहलू है कि निंदिया। पर जदों कोई समर्थ सतगुरु दी परमात्मा दी उस्तत करदा है इस विचों एक ता संसार दी निंदिया संसार दी द्वेष मिटदी है ते दूसरा जिस दे गुण गाए जा रहे ने जिस दी उस्तत कीती जा रही है कुदरती तौर ते उस दे गुण उस दी सिफत उस दी वड्याई करन नाल उस वड्डे दे गुण सिफत करन वाले दे अंदर प्रवेश कर जांदे। जिन्नी कोई परमात्मा दे गुण गाउंदा है उन्ने परमात्मा दे स्वभाविक गुण कीर्तन गुण गायन करन वाला सिफत करन वाला उहदे अंदर प्रवेश कर जांदे। जो भाई साहिब ने शब्द गायन कीते ने उन्हां विच समर्थ गुरु नूं धन कहण दी उच्चा कहण दी वड्डिया कहण दी उस नूं सब तों उच्चा सत्कारन लई हजूर ने प्रेरणा कीती। इसे कारण इस अमृत बचना दी लड़ी विच यह बचन वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुरसोई। इहदा मतलब गुरु नूं धन कहो। इसे विच ही बचन सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजिया। इसे ही अमृत बोलां विचों एक मैं बचन आप जी दे नाल जरूर संखेप जी व्याख्या लई कहांगा जिथे बाबा सत्ता साहिब जी दे इह बचन धन धन रामदास गुर जिन श्रिया तिने सवारिया। भट्टां दे बचन के गुरु रामदास जी नूं धन कहिए ते मिलदा की है उस विचों है जेकर एक इंसान सतगुरु समर्थ नूं चेते करे ते पट साहिबान जी दा इह जिंदगी दा तजर्बा है कि गुरु रामदास जी नूं कोई धन कहेगा ते उस दे अज्ञानता दे खनेरे नूं धन शब्द ही कट देवेगा। जे समर्थ गुरु दा कोई सिमरन करेगा ते उस दे अंदर दी गुरु रामदास जी तपश मिटा देंगे। जे कोई गुरु रामदास जी दी सिफत करेगा वड्याई करेगा
जितना वो नाम जपेगा उस तो कई गुणा और बख्शिश होगी। जे कुछ सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं धन कहेगा उस दे घर अंदर दरिद्रता कंगालता जो भी संसार दे दुख कलेश ने वो निकल जाणगे। घर विच संसार दा हर सुख गुरु रामदास जी दा शब्द कहन नाल मिलेगी। इथो तक केवल वड्याई ही नहीं केवल अज्ञानता दा हनेरा ही नहीं सतगुरु गुरु रामदास जी नूं सारी संगत मिलके जे धन कहे ते पट साहिबान कहिंदे ने गुरु रामदास जी नूं धन कहन नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है। उहनां दे अमोलक बचना विच्चों जो गायन कीता गया है असीं पढ़ने आं जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावे ओ केड़ा सतगुरु। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो सारी संगत मिलके गुरु रामदास जी नूं धन धन कहो। जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरहो नर। जदों संगत ने जिग्यासुआ ने भावना वालिया ने गुरु नूं पार ब्रह्म कह के नमस्कारिया उन्हां दी सिफत कीती इस सिफत विचों होर की दात मिली। इस दे मुतलक बाबा सत्ता जी ने अपने रसना तो गुरु रामदास जी दी सिफत विच उचारण कीती हुई पौड़ी विच बड़े बख्शिश भरे बचन कहे। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिना सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन खार है धारिया। देखो अगे किड्डा वड्डा सिखा ने संगता ने गुरु रामदास जी नूं अपने सीने विच थां दिता ओ थां सी सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया ते जिसने भी गुरु रामदास जी नूं धन किया जिनी तू सेव्या भाओ कर से तुद मा पार उतारिया। जिसने भी तुहानू भावना नाल श्रद्धा नाल जिनी तू सेव्या भाओ कर से तुद पार उतारिया। लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कढे तुद सा परवाहिया। जो धन कहेगा उन्होंने सारे औगण सारियां बुरियाईयां अंदर दी मैल गुरु रामदास जी दा नाम लिया चली जाएगी ते अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर जी दे नाम दा निवास होवेगा। एक कारण के इन्हां शब्दां दी लड़ी विच जो गायन कीते गए ने एक पौड़ी गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बोल आशा की वार विचों लई गई है। उस पौड़ी विच गुरु नानक साहिब जी ने यह स्पष्ट कर दिता कि जदों कोई किसी की वडियाई करेगा संसारिक तौर ते किसी इंसान की वडियाई करो ते अंदर निराशता अंदर फिक्कापन अंदर बेरसा प्रतीत हुंदा ते जिहड़ा सत गुरु नूं वड्डा करके सलाउंदा है गुरु दियां वडियाईयां उस सिख दे तुर अंतर आत्मे आपणे आप निवास कर जांदियां। महाराज जी दी इस पवित्र पौड़ी विच हजूर ने फरमाया कि सतगुरु वड्डा कर सहलाई है गुरु नूं वड्डियां करके सिफत कर। महाराज कहन लगे जिस विच वड्डियां वड्याईयां जिस समर्थ गुरु विच हर एक वड्डी वड्याई है सह मेले ता नदरी आईया जे परमात्मा दया करके समर्थ गुरु मिला देवे ए वड्याईयां ता ही नजर पैंदियां। सह मेले ता नदरी आईया जा तिस भाणा ता मन वसाईया जेड़िया गुरु जी दियां वड्डियां वड्याईयां ने जदों परमात्मा नूं कोई जिग्यासु पा जाए गुरु दियां वड्याईयां उस सिख दे तुर अंदर प्रवेश कर जांदियां। सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस भाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां।